0: अध्ययन की नवेफती हो रही
1: मेरी और बड़ा हास वे
0: अनेक काठेस तो क्या रे भी मता मन्ना हाँ द देरा वेफाये
1: आहाने के वार गया कुछ जे आहाने न माला में कुरने
0: हास नो अब स्पेल द टी प्रोग्राम अडुए ही मती का हाला हुरी हाँ कंका मंग हाल्लो हो दंगे ना स्पेल द
1: टी
0: Mikaala kankan dimaavi ma kanta kura vidana goetan e programu nge gane.
2: Spill the tea. Hame kani divehi raja gadu.
3: Aditta dua hoge haveiro. Hatra gadi fanaraga.
4: Repeat. Buddha dua hoge haveiro. Hatra gadi fanaraga.
3: Adi budaspati dua hoge haveiro. Fahed zahayro.
0: Engha sataristeka salis 9 kilohertz medium wave. अधे अड्डिया 9 मेगाहर्ट्स एफएम बैंड हमें कन दिवही राज्य के अड़ों इंतजार को लवा
5: स्पिल द टी
6: दुमफत के दुमकी वे सेकम के साबुंग अलगमेंट ना केलों लिबे कम एक माना कि दुमफत के इस्तेमाल कुरामी है कैरेगा ओले कम का वाना में एक अन्न कुरामी है वे दुमफत के दुमंग होशल के तफात केलों के तंग बलिबे एको तुम लिबे केलों तक बदार तफात वातर के कैंसर तक कुर्म तुम के हिरास इबा इतुर कुरवा हासको कोड़ा को दिना लेगे कैंसर सिकुंडी के कैंसर कहल कैंसर तक जहम के हिरास दुमफत के दुमंग होशल में इतुर कुरा कम दिरासा तक कुम फेरनंगे बहुरे दुमफत के दुमंग होशल में कि कुड़ा कुदिन ना तफात वतर के एलाजीज तक ऑटिज्म कहल कंत तक कुर्मन तुम के हिरास इतरु वाक में मैं गे तुरुंग मैं अर्धप शोगा जही रंगल नोमा दिगुला गंदी उन कहल कंत तक कुर्मन तुम के हिरास इतरु कुरा कमे बड़े तिमी हुवस दुमफत के दुमंग होशल एक कम का वाण में स्ट्रोक हार्ट अटैक जो हम के हिरास ऐतक गुण इन इतरु कुरा कमा दिरासा तक उन फेरनांगे बहुरी मैं गे तुरुंग दरिमाम के निजाम असर कुर्मा दिफाई बार दबुमा मैं कहल कंत तक कुर्मन तुम के फुर्सत दुमफत के दुमंग होशल में वसीबा इतरु वेगेंदे
7: चागुएर कमाए को फिलावल कुरा गेंदी उमंग आलोगन में मुदरिसो मसक के कुरा गई।
1: फिलावल रेव उमंगा आलोगन में बदानी कुदिंगे बैवेरुंग इतर कुरे बैने गए तक।
8: टेक्नोलॉजी बैनुं को गयोंगर ना दिन में किमी जमानों के इम्मे कामी आप गए।
9: ती ये कामी आप मुदरिस के बुने वे फदा इल्मी वाहक तक गेनिस दिन मा दिवह राज्य गड़ूं गेनिस दिनी।
10: एदुरु अशे
1: ಚೌಗರ ಕಂ ಇತುರು ಕುರ್ಮದೆ ಮಿಸ್ ಆಮಗತೆಗ ಕೊಲ್ಲಾ ಕಂತತ್ತಂ ಹುನ್ನಾಣಿ
11: ತಿಮಣ ಹಂದಾಂಗೆ ಬಹುಟೆ ಅದಿವೆಸ್ ಮಿಸ್ ಮಿ ತಿಮಣ ನೆಲ್ಲಿಯಂ ಕೆಂದಸ್ ಕೊದ
12: ಗೌಮೆ ಬಿನಾ ಕುರವೇನಿ ಅಣ್ಣಂಗ ಜೀವತಪುಗೆ ಎ ದರಿವರುಂಗೆ ಸಿಕುಂಡಿತ ಬಿನಾ ಕೊ
9: ತಜಿಬಾಕಾರ ಎದುರುಂಗೆ ತಜಿಬಾಯಿ ಅದುಗೆ ಲ ಸಿಕುಂಡಿತ ಬಟ್ಟಂ ಕೊದ್ದೆವಾ
13: ಹರುದನ ಬಿಂಗಲಕ ಹರುದನ ಮುರಬ್ಬಿ
14: ಎದುರು ಅಶಿ ಬುರಾಸ್ಪತಿ ದುಹುಗೆ ಹಿಂದೂನು ದಿಹಗಡಿ ತಿರಿಹುಂ ರಿಪೀಟ್ ಹುಕುರು ದುಹುಗೆ ರೇಗಂಡು ಅಗ್ಗಡಿ ತಿರಿಹುಂ ಅದಿ ಹೊಣಿಹಿರು ದುಹುಗೆ ರೇಗಂಡು ದಿಹೈ ಛಾಯಿರು ಎಂಹಾ ಸತರ ಸತೇಗ ಸಾಳಿಸ್ ನೋಯ್ ಕಿಲೋ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ವೇವ್ ಅದಿ ಅಂಟಿಹ ನೋಯ್ ಮೆಗ್ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್

0: ती होने रुविलेरे आदि तिमम्मिंग मी गेंदनी तिरीस दोस फोरे हम कुरे बुमा नुवता शब्बाल महु के हाँ दो फिरने दें रोड हिप्पा उमने कुरे विदाल विए तिमन्ना दें ने वी में मावे इतके फाना हाँ दो फिर वटाएगें रोड फुलंग होने वी होने वों ऐ तिया बेकलों ना अमल कुरे बंजे ही वटाएगर नवाने कामे नून तोए विदाल विए नूने के मी तिमम्मिना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमर कुरे वाफा वागोते अलिमाम तिर्मिजी विदाले फावे मी रंगलो अदि सह गरीब सनदकुं रिवावेगें वा हदीसे के अदि एलमेरिंग अमल कुरव मुगेंदवा गोतकी मीये कोमे बायकवेस हांदु फेनुं लाजिम वाने कम विदालवे बुलुगुल मरामुगे शरह फतुहुल अल्लाम का अल अल्लामा सिद्दीक हसन खान विदाल फावे बोड़ सहराव यकी कोमे बायकोस रोध हिफन जेहेनी ए रशका एरा हिमने मतलब के अहुल वेरिना हांदु फेनुमुं कमा विदालवा एल वेरिंगे बस फुले
1: आदे हांदु फेनुमुगा तन तफातुम के वाह के तेरेगा मी माने की राज्य के राज्य बले अफिकम गावानम फहारुगा राज्य के में उत्तरा राज्य के में देखुना इरु अरा ओस्सुं गाडी तफातु हुरे दान एहेम वेजे कम गावानम हांदु एरुमा हांदु ओस्सुमुगा वेस हम ए तफातु फेन्नान एहेम एगोत फेन्ने एरुगा फहारुगा मी उत्तरुगे एम्मे उत्तरुगे रशका फेन्न वगुता फेन्न गोता मेदराज तेरे गरत्तक फेन्न गोता आदि राज्य के में देखुनु गरत्तक फेन्न गोता एकारे तफात तके हुरुं ऐ वेदाने गोते ऐह नमः इसमें का मुहिम कम की राज्य का जैसा के दिवेह राज्य का मी मी वेरिकम के निजाम उन्नो गोतुन राज्य का मैसरोकार ओए फदेम में होनी हम वाकी अथलो तके में ऐह वेज कम गावानम राइसल जुम्हुरिया नो ते राइसल जुम्हुरिया आयन कुरवा फुन फरातकुं ए गोइन्नी माने एम गोइन्नी मा हिसाब हम फेरिगें मुली दिवेह रायतुन माने की दिवेह राज्य का दिरी उले हुरिहा मुस्लिम दिवेह राज्य के दिरोले हुरी हा मुस्लिमों के मच्चा वाजिब वेगें वाने ए अमुरा एगोतन वते ए एंगे उमा एगोत कियमन तेरिकं अदा करूं माने की मिसाल का दौलत के फरातों इवलान कुरी हंदो साबित विकं इवलान कुरी एम वज्ज कम गावानम ए तबावे रोद हिफुम की ए मि राज्य के दिरोले हुरी हा मुस्लिमों के मच्चा वाजिब वेगें वाकम एगोत रोद नुहिफा हुरी मिह कम गावानम ए न वाने रोद मोगे वे सौबक अनुला रोद दूकोल्ला फुरी मिह गतुगा ए न बेलेवेनी देन एफद मिहुंगे वाहक सुन्नत भुरी बयान कुरवाफ एमी हुन्नंग एलिबे अजाब गवाह के एमी हुंग एकुरा एकुरी खंतव के नुबैक मुगवाह के भुरी बयान कुरवाफ एम वीमा मी एगोतम मिसाल का मी उम्मतुगे एमेन नकशे एगोता कशे नुएं अन्नान एम वेकें आमुगोते ग राज्य के स्पायन राज्य राज्य कैर गाउम तक कैर गाउम तक बलान एगोता रियाय कुरुं ए उन्न जेहेन कमे एहन नुं कम गवानम एग वर बड़त मसल तक कुरि मतवान देहन मस मिहिं दन्नवार गु सालमेन बाय फार अडीवेन अवटरे गाउम तक मी वर बोड़े तफात माने की बाय फहारो अलगुमें दिवेही राज्या ए अवटेर गाउम का देदु हेगे फरगुस ओवेदान रमला महा आंदु साबित कुरुमा गुले मसला एम विम एगोते कं कुरुमें नो मी गोती हागे गतु का मुस्लिमों के एब्बा वंत कं दिमे हेट्टु मट्टका कुरें जे मसे के कुरुं एई मी के तेरें गेनन जेहन वरं मुहिं मुकामे एम विम दावलत के फरातुं एगोतन निम्मा फिकम का वानम एया एगोतन अमल कुरुं एई अलगुमें कुरें जेहन कम की एकं अलगुमें गे लोबेत नबिया सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम के हया पुलगावेस दक्कवा देववा फन एकं हमे हेम्मे मी अब्दुल्लाह इब्न अब्बास मी के वाह के तेरे इन्वेस अलगो मेन एंगे एंगे हामवे एकं कं एगोत दान जेहे कं माने की हाकिमा नुत दौलत के फरातम एगोत का अंगाफ कम गावानम ए तबावुं ए कुरन जेन कमिकेश कम कवान कं आदि ए सरहद्दुग हिमेने हुरिहा रशक हुरिहा माने के दिवेहि राज्य वेज्जिया मालें हंदु फेनुनि एहेम वेज्ज कम नुत राज्य गे में देखुन नुत एम उतुरुग रशक हंदु फेनुनि एहेम विकमुगा वियस मैसर कर माने की मी रईस जुमहुरिया नुत रईस जुमहुरिया एकम आयन कुरवाफ इदारा एग फरातुं इउलान कुरानी ए हेकिंगे हेकिबाह बलाफ नुवत मस्फुरिहमवे अने महान हंदु बेलुं एगोत दिमाव हालत माने कि तिरी समयफ देंगन्नानी अने महुगे एकेत्ता अन्नानी एम एगोत हालतुगे इउलान कुरुमा एकु ए तबावुमकी मि राज्येग दिरि उले हुरिहा मुस्लिमुंगे मच्च वाजिबगेम वाकमे ए खिलाफुवुं एई एवस हालेग कुरेविगेम वानकमेन्नुं एई हाकिमागे अमुर नुकेमन तेरिवुं एगे इतुरुं मिदेन्ने विहिं ए रोदे गस्तुगे दूकोल्ली कमुगे मी फाफ एमी हिगे बोलुगे एलेने कमे

0: खबर कड़ी।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। मैं दिव्यराज जेगाड़ू के खबर कड़ी प्रोग्राम मेरे के प्रोग्राम आए की मैं बदल कोरी अलगन सामी अहमद वाहिद। मेरे के प्रोग्राम का ही मैंने मुहिम खबर तो हुए तेरे का राज्य विदेशी इतरे कुरुं हरदना कुरुं कुरिये के गुतंग एजेंसी तंग उफिद्दमा मसके कुरमुंदाकमा वजीर इहसान विदार्बुं अड्डू सरहदी फ्री जोन इफ्तिताह को जागतक कुरबंतिलुमं हुलवालुं सियासी गुतुं फिकुरु तफात विनमस इक्तिसाद कुरियरवेनी हुरिहा फरातिं एब्बह कियागें कुरवे मसकेतुं कमा वजीर साईद विदार्वी खबर गेतुरुं एशिया मीडिया समिट के कामयाब कमाए को समिट निम्माली खबर हिमनालानं अदमी गेतुरुं वेस पोहिम खबर तब मिरेगे खबर गड़ी प्रोग्राम गे हिमनालाना।